शागणेन वरदध्नि विमध्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्रघोषाः रोषात् कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः श्रीगण नमस्कृत देव विभो तव सुप्रभातम् पद्मेश मित्र शतपत्र गतालिवर्गाः हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्याः भेरी निनादमिव भिप्रति तीव्रनादम् श्रीमोदक प्रिय देव विभो तव सुप्रभातम् सेवा पराशिव सुरेश कृशानुधर्म रक्षोऽम्बुना